0: KZSU Stanford.
1: Namaste, adab, sashyakal. Welcome friends, this is KZSU Stanford 90.1 FM. I am Pranjali and you are listening to Chai Time. Aaj hum sunenge Kishore Kumar ko. वो किशोर कुमार जिनके सब गाने एक से बढ़कर एक हैं। तो दोस्तों, ये कोशिश ही बेकार है कि मैं उनके 10 बेहतरीन या पसंदीदा गाने चुनूं। तो हम ये करते हैं कि जो दिल में आ जाए इस समय वही सुनते हैं, ऑफ कोर्स जो मेरे दिल में आए, क्योंकि स्टूडियो में तो मैं ही हूं ना। लेकिन यकीन मानिए, ये गाने आपको भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि किशोरदा की आवाज में जो है। जुड़े रहिए चाय टाइम से।
2: KZSU Zootopia is our robot-curated music service that takes over when our live DJs aren't available. Like a self-driving car, Zootopia operates with no human at the controls. Zootopia now streams epic tracks from thousands of our DJs' most played albums over nearly the past 2 decades, so you can enjoy the best of college radio KZSU style. Check out our live playlist at kzsu.rocks. Zootopia, truly the Bay Area's coolest college radio on KZSU.
1: दोस्तों, 4 अगस्त को किशोर कुमार यानी हमारे अपने किशोरदा का जन्मदिन था। पिछले साल इस दिन, इस साल इस दिन, या यूं कहिए जब से चाय टाइम शुरू हुआ है तब से उन पर एपिसोड करना चाह रही थी, पर हो ही नहीं पाया। लेकिन जैसे चाय पीने के लिए किसी ओकेजन की जरूरत नहीं होती, परिवार से गप्पे लड़ानी हो, दोस्तों से गुफ्तगू करनी हो, किसी को वेलकम करना हो या यूं ही टाइम पास करना हो, चाय हमेशा साथ देती है, हमेशा अच्छी लगती है। और वैसे ही है किशोरदा के गाने। मस्ती कर रहे हैं या बीते हुए मस्ती के दिन

याद कर रहे हैं, आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या किसी गुजरे हुए हसीन पल को याद कर रहे हैं, या फिर ऐसे किसी पल का इंतजार। किशोरदा की आवाज आपके बिल्कुल पास से गुजरती है, आप तन्हा हैं तब भी, सबके साथ हैं फिर भी। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंस के, थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। तो दोस्तों, चलिए साथ मिलकर वक्त से ये लम्हा चुराते हैं और सुनते हैं किशोरदा को। याद रखिए, ये पल भी जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है।

मैं हमेशा ही कहती हूँ दोस्तों कि उम्दा आवाज और गहरे शब्द मिलकर एक अलग ही जादू जगाते हैं। इस गीत को शब्द दिए हैं, जी हाँ, हमारे अपने गुलजार साहब ने। मुझे किशोर कुमार के सारे गाने एक जैसे पसंद है, कोई फहरिस्त में ऊपर या नीचे नहीं, लेकिन मैं हर बार चाय टाइम के पहले मन में एक लिस्ट बनाती हूँ और आज सबसे पहले जो गाना मेरे जहन में आया है वो है फिल्म खामोशी से। वो शाम कुछ अजीब थी।

शाम कभी उदास होती है, कभी खुश, कभी मन में एक अजीब सा सुकून होता है तो कभी एक बेचैनी। लेकिन जब शाम मस्तानी हो तो बस दिल में एक ही आवाज गूंजती है, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, खींचे कोई डोर तेरी ओर लिए जाए।

डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, यदि आप बंद गए उस डोर में, पड़ गए प्यार में, तो बस क्या कहना, मौसम बदल जाता है, आपको सारा जग प्यारा लगने लगता है। छूकर मेरे मन को किया क्या तूने इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग।

चलिए जरा पीछे मुड़कर चलते हैं, पीछे ब्लैक एंड व्हाइट एरा में। बैठते हैं जाकर नदी के किनारे, जहां बह रही है चंचल हवाएं, जहां सितारों की महफिल ने करके इशारे कहा कि अब तो सारा जमाना है तुम्हारा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा।

बेहद ही खूबसूरत अंदाज में गाया है इस गीत को किशोरदा और आशा जी ने, और उतना ही खूबसूरत इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। हसरत जयपुरी के साथ एक नाम हमेशा आता है मेरे दिल में, शैलेंद्र का। तो अगला गाना शैलेंद्र का लिखा शंकर जयकिशन के संगीत के साथ, छोटी सी ये दुनिया।

friends. This is KZSU Stanford 90.1 FM and you're listening to Chai Time. Up next at 4 p.m. we have New World Disorder with Sadio. और इस समय आप सुन रहे हैं चाय टाइम और चाय टाइम पर सुन रहे हैं किशोर कुमार को. अभी चल रहा है सावन का महीना. भारत में ये मौसम हमेशा बहुत अच्छा लगता है मुझे. बारिश किसे अच्छी नहीं लगती और बारिश में चाय के साथ गाने सुनना ये भी सबको पसंद है. और रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन ये गाना भी. लेकिन इस बार इसे सुनते हुए दिल थोड़ा उदास है. उत्तराखंड में देश के कई हिस्सों में बारिश ने जो कहर किया जो तबाही मचाई उससे अभी तक वहाँ के लोग उबर नहीं पाए हैं. हमारे किसान अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. तो आप बेशक इस गाने को सुनिए लेकिन उन लोगों को भी याद रखिए. और चाहे आप हिंदुस्तान में हैं या बाहर कहीं भी हो सके तो अपनी ओर से छोटी या बड़ी कोई मदद ज़रूर कीजिए.

खुशी के, दुख के, प्यार के, हंसी के कोई भी गाने हो, खास बात यह है कि किशोरदा की आवाज में वो इतने एफर्टलेस लगते हैं, इतने सहज सरल, दिल अपने आप उन्हें गुनगुनाने लगता है। ऐसा ही एक गाना, बहुत अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन, माफ कीजिए, इसे गाया है किशोरदा ने, निभाया है किशोरदा ने, और सामने है एक लड़की मधुबाला। फिल्म चलती का नाम गाड़ी से बर्मन साहब के संगीत के साथ एक लड़की भीगी भागी सी।

दोस्तों, आज मेरे दिल में किशोर कुमार के हजार गाने आ रहे हैं, लेकिन मैं एक सिक्का लेकर बैठी हूँ, टॉस कर रही हूँ, और जो गाना जीत जाए उसे आपको सुना रही हूँ। पर लगता है ये सिक्का शोले वाला सिक्का है, क्योंकि वो वही चल रहा है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। किशोरदा गाएं, अमिताभ पर्दे पर निभाएं, अच्छा ही लगेगा। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मिली से अगला गाना।

जब आप पर्दे पर कोई गाना देखते हैं तो आपको लगता है कि हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री इस गाने को खास बना रही है, लेकिन साथ ही बात ये होती है कि जो गा रहा है पीछे और जो निभा रहा है पर्दे पर, उनमें तालमेल होना जरूरी है, और किशोरदा की वही खास बात थी। आपको याद होगा मुकद्दर का सिकंदर में अमित जी का एक बड़ा ही इंटेंस सा मोनोलॉग है, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, इसके पहले और उसके बाद है वो गाना, लेकिन इतना सीमलेस आपस में घुला हुआ। अच्छे गाने किशोरदा ने खुद के लिए गाए हैं और साथ ही देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार और ऐसे बहुत सारे नामों के साथ, और हर किसी के लिए उतनी ही शिद्दत से गाया है उन्होंने। और ऐसा ही एक गाना ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत।

दोस्तों, घड़ी का इशारा हो गया है और अभी तो मेरी लिस्ट किशोरदा के गानों की शुरू ही हुई थी। समय का पता ही नहीं चला, लेकिन सुकून इस बात का है कि अगले रविवार फिर मिलेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। मुझे पता है कि किशोरदा के बहुत सारे आइकॉनिक गाने, लोकप्रिय गाने आज हम नहीं सुन पाए, पड़ोसन, आराधना, आंधी, गाइड और भी बहुत सारे पिक्चर्स के गाने, लेकिन हम आज नहीं तो कल सही जरूर सुनेंगे। बस जुड़े रहिए चाय टाइम से। आज के गाने आप अगर फिर से सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं soundcloud.com/chaitimeradio पर। आप चाय टाइम को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, पा सकते हैं टम्बलर पर, और यदि कुछ सुझाव देना चाहें तो लिख सकते हैं facebook.com/chaitimeradio पर। अगले रविवार मिलते हैं फिर से। यही दुआ है कि आपका आने वाला हफ्ता अच्छा गुजरे। दोस्तों, आपको जिंदगी की हर खुशी मिले, आप अपने लिए और अपने आसपास वालों के लिए एक ऐसा जहां बना सकें जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले।